0: प्रतिमानं स्तम्भस्य च शिलान्यासः विहितोऽस्ति। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, जेनजी हुतात्म परिवार कल्याण कारी समाजस्य ज्येष्ठ सदस्य वासुदेव जोशी च संयुक्त रूपेण एतासां संरचनानां पूर्वेद्युः शिलान्यासं विहितवन्तः। तदवधौ गृहमन्त्री गुरुङ जेनजी सन्ततेः याचनायाः सम्बोधनाय आत्मभिः सक्रियेण प्रवर्तितम् अस्तीति प्रत्यपादयत्। पृथ्वीराजमार्गस्य अन्तर्गतं कृष्णभृगौ निर्मितस्य मार्गस्य विस्तारस्य कार्यं प्रारब्धं वर्तते। भूस्खलनस्थलस्य उपरि नैरन्तर्येण कार्यस्य सम्पादनस्य पश्चात् पर्वतोपरितः पक्षद्वयात् मिटर चतुष्टय परिमित विस्तृतमार्गस्य निर्माणं जायमानमस्तीति नोविषे मुङ्ग्लिङ्ग मार्गायोजनायाः पश्चिमखण्डस्य स्थपति सचेन्द्रमिश्रः असूचयत्। स्थपतिः मिश्र मार्गनिर्माणस्य अन्तर्गतानि कार्याणि द्रुतगत्या जायमानानि सन्तीति ज्ञापयन् अस्यैव भाद्रमासस्य अन्तं यावत् यातायात साधनानां सञ्चालनत्वेन प्रयासः जायमानोऽस्तीति अज्ञापयत्। भेरी तटीय मार्गस्य अन्तर्गतं जाँजरकोट डोल्पा मार्गखण्डे शुष्क भूस्खलनस्य पश्चात् अवरुद्ध मार्ग पुनः सञ्चालितो वर्तते। तटीय मार्गस्य अन्तर्गतं डोल्पा जनपदस्य त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकायाः पञ्चमवडा क्षेत्रस्य छिप्रेदह स्थाने दुरापन्नस्य भूस्खलनस्य अपसारणस्य पश्चात् मार्गोऽसौ पुनः सञ्चालितो स्थिति डोल्पा जनपद प्रहरी कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। मदन पुरस्कार गुटी संस्थया गत विक्रमवर्षस्य मदन पुरस्कारं नेवार समुदायस्य परम्परागत मुखौट नृत्यस्य कृते लेखकाय वीणा जोशी इत्यस्यै प्रदातुं निर्णीतं वर्तते। इति समाचाराः।
1: विपदको समयमा बालबालिकामा डर, चिन्ता, तनाव वा असुरक्षाको महसुस हुन सक्छ। उनीहरूका कुरा ध्यान दिएर सुनौ, उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गरौं र सुरक्षित तथा सहयोगी वातावरण बनाऊ।
2: समस्या बढ्दै गएमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिन नहिचकिचाउ।
1: आपतकालीन सहयोगका लागि बाल हेल्पलाइन 1098 सम्पर्क गरौं।
2: बाल बालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गरौं, उनीहरूलाई सुरक्षित र सहयोगी वातावरण दियौं।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र।
4: बाढी र विपद सम्बन्धी सूचना सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेका छन्, तर सबै सूचना सही नहुन सक्छन्।
5: कुनै पनि फोटो, भिडियो वा सन्देश प्राप्त भएमा तुरन्त शेयर नगरौँ। सूचना स्थानीय तह लगायतका सरकारी निकायहरू वा विश्वसनीय सञ्चार माध्यमबाट आएको हो कि होइन जाँच गरौँ। मिति र स्थान पनि पुष्टि गरौँ। एउटै सूचना अन्य आधिकारिक स्रोतमा पनि छ कि छैन खोजौँ।
4: तुरन्त सबैलाई पठाउनुहोस् वा अहिले नै शेयर गर्नुहोस् जस्ता सन्देश प्रति विशेष सतर्क रहौँ।
5: याद राखौँ, गलत सूचना फैलिँदा अनावश्यक डर र भ्रम फैलिन सक्छ, त्यसैले सूचना पुष्टि गरौँ अनि मात्र शेयर गरौँ।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।

थो रेडियो नेपाल ख नेपाल बासी समाचार जी उपेश पाखिना दिशा थौ नेपाल सम्मत चिन्सा सौ पिखुद गुलागा अजा एकादशी रसुहाया पोटेकुसी वगु खुसी पाला मरुपिन्त लुमका थौ नेपाल व विदेशे दुगु सरकारी दूतावास व नियोगे बच्ची ध्वे जकबे के तिङकुदु चाका जुगु चिन्सोनु खुनु सरकार राष्ट्रिय शोक्य कोष्णा यागु ख मधुपिन्त हनबना व छेन्जापति राज्य थथे राष्ट्रिय शोक कोचुगु ख फोटेखुसी खुसी वगु खुसी बाला आतक सिप्नुगु सिम चिन्सोस व नेसोम लुयावगुदु आतक सुइगुस व गुइ निम तनाचुगुदु प्रहरी प्रधान ज्याकु नक्साल्या लिपाङ धल कथ न्यास व सुइम मिज सोस व निच्याम मिसा व पेस व गुइन्याम सिम मसिकेत थाकुगु अवस्था लुयावगु ख आतक चिन्पेस व पिगुम सिम या त सुरक्षित नक्सा लाका तगुदु चीन नेपाल सीमा लिक हिमाली लागा भदौक दस गते वगु खुसी बाल चीन पाखे सिप्नुगु ल्या पिसोम थेङ्गु धागु दु अन आतक न्यास वी गुम मुनु त तनाचुङ्गु धागु दु रसुवाया पोटेखुसी खुसी बाले मरुपी मध्ये निस व पि पेम सिम त्रिभुवन सिक्षेन अस्पताल मार्जगन्ज हगु दु अस्पताल या फोरेन्सिक ल्याब प्रमुख डाक्टर गोपाल चौधरी या कथ सचिव खुइछम सिम अस्थायी व्यवस्थापन यागु दु अथे नि पेङ्गु सिम थतित पिन्त ललागु व आ नेगु म सिम जक अस्ताले दुगु वेक्ल कनादिगु ख फोटेखुसी खुसी बालिपा तनाचोपे मुनु त माले त नेपाल प्रहरी विशेष तालिम दुपी केनाइन खिचा पुच या त परिचालन यागुदु रसुवा नुवाको चितवन नाप थिति थासे प्रहरी केनाइन पुच परिचालन याना मालिकु ज्या याना चुङ्गुदु रसुवा जर्मन सेफोर्ड जम्बो व बेल्जियन सेफोर्ड रकी नुवाकोटे ल्याब्राडोर लियो व कालु नाप चितवने जर्मन सेफोर्ड दिप्सी या त छगुदु प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण काप्ले लाना चुङ्गु छे च्या तले नाले दुने मुनु मालेगु ज्या थुमिन त लिचो लाइक त छेला चुङ्गु कनादिगु ख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह खुसी बालिपा मदिक ज्या खते जुपी सुरक्षाकर्मी या उच्च कदर यागु धैदिगुदु सामाजिक सञ्जाल पाखे मिग वेक्ल विपद व्यवस्थापन खटे जुपी शीर्षक पिन्त माक त हनबना तेगु नाप कनादिगुदु थौ भाद्र बाइस गते निजामती सेवा दिवस दम्पतिक भाद्र बाइस गते स्थायी सरकारी रूप नालाकाया तगु निजामती सेवा दिवस हनाचुङ्गु दु नेपाले विक्रम सम्बत 2061 साल निस्ते निजामती सेवा दिवस हनाउयाचुङ्गु ख नेपाले चे सोदो शिवे अपो निजामती सेवा ज्यायना सुपी कर्मचारी पि दु सिंहदरबारे संघीय संसद भवन परिसर दुनिए जेन्जी शहीद स्मारक पार्क व शालिक नाप स्तम्भ या जग तगुदो गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल व जेन्जी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज या ज्येष्ठ जुज वासुदेव चोसी मङ्का कथ जग सोनादिगु ख ओएचोले गृहमन्त्री गुरुङ जेन्जी पुस्ता या इनाप व मगसिया त थपिन्छ पुङ्गे त कुत याना चुङ्गु नेपाल सरकार हलिया मुक्ति या घोषणा यागु चिन च्याद पोङ्गुली मिग धनगढी चिन च्याकोगु मुक्त हलिया दिवस हङ्गुदु तत्कालीन सरकार 2065 भदौ 21 गते सुदूरपश्चिम या गुगु व कर्णाली या सुङ्गु याना निगु जिल्ला हलिया छेज या त हलिया मुक्ति कोष्णा यागु ख राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ या कथ चिन सोध गुस व ने सोम छेज मध्ये आतक चिन सोध न्यास व पि कुगु छेज पिन्त प्याकेज बि धङ्कुगु दु
परराष्ट्र मन्त्री सिसिल खनाल ओ कोरिया परराष्ट्र मन्त्री छो ह्युन दथी पटेकुसी खुसी उद्धार ओ राहत विशेष सहल ब्यागुदु परराष्ट्र मन्त्री खनाल कोरिया सरकार यागु ग्वालीपति सुबा देशना दिल थोए दथी कोरिया या परराष्ट्र मन्त्री ह्युन मा कथ थ पिन्स नेपाल त ग्वाली मतिक यागु बचन ब्यादिगुदु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पोटेकुसी खुसी बा या विशेष निपेङ्गो धल या प्रस्ताव पारित यागुदो पार्टी या कजी पुष्पकमल दाल प्रचण्ड या नासी ओ लिउ कजी माधवकुमार नेपाल या ह्याका दिगु मु ज्या थथे कोचुगु धागु ख नेपाली काङ्ग्रेस सभापति गगन कुमार थापा ओ डाक्टर शेखर कोइराला दोथी पार्टी दुनिया या आन्तरिक पङ्गत जेङ्केत सहल हजुगुदु नेता डाक्टर कोइराला काङ्ग्रेस पार्टी छप्प मोजुक मगागुली थपिन्स त्यागियागु निथना दिल लिसले सभापति थापा थन छप्प छदि या पछे दुगु निथना दिगु डाक्टर कोइराला सचिवालय थागु ख प्रहरी सचिव छिनपिङ्गु किलो लागुवास गजी दुगु सवारी साधन नाप साजन चेपाङ या त जोङ्गुदु पर्साया पकाह मैनपुर गाउँपालिका एक तिलापु ल धारे उनाचोङ्गु छग निशान कार या त दिका मालिगु चोले डिक्की दुने सुचुका तगु गजी लुयागु नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर मल्ल धाइदिगु ख मदन पुरस्कार गुठी 2082 साल या मदन पुरस्कार नेवा समुदाय या परम्परागत ख्वापा प्याख या नीति चोमी बिणा जोशी राजभण्डारी या त बितेङ्गु दु मदन पुरस्कार मूल्याङ्कन या नीति तिथि विदा या निस व गुइ च्यागु सफु पाखे चिगु सफु या त ल्यगु ख अथे मेचोमी किरण खरेल्या त जगदम्बा श्री शिर्पा बितेङ्गुदु किपु नगरपालिका दुई ध्वाखा न्यामसीमा चोङ्गु नेपाल भाषा एकेडेमिया गोसालय अरिको हले विशेष साङ्गीतिक ज्याजो कला ओ सिजना तजिक कोच आगुदु सदाबार गायक ओ सङ्गीतकार मधुम योगेश वैदिया चेगु बुदिया लसत्या वेकया साङ्गीतिक योगदान या लुमकुन्से गोसागोगु उगु ज्याजुले वेकया चिन्हेपु सदाबारमे निहोगु ख ज्याजुले मधुम जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ मधुम कवित्री नारायणी देवी श्रेष्ठ मधुम बाख चोमी सरस्वती तुलाधर ओ पोटेकुसी रसुवा खुसी बाले लाना मधुपी नागरिपिनको चिर शान्ति या कामना यासे छगुमेट मौन धारण नाप यागु ख किपु नगरपालिका नगर प्रमुख कृष्णमान डङ्गोल या मु पाँसुई झ्यागु उगु ज्याजुले नेपाल भाषा एकेडेमी या उपकुलपति डाक्टर पुष्पराज राज कर्णिकर्ण लस्कु सुनोचु तयादिसे नेपाल भाषा ओ नेपाली सङ्गीत नक्षत्र योगेश वैद्या साङ्गीतिक उचाइया चर्चा परिचर्चा यनादिगु ख अध्यय ज्याजुले विशेष पाकत वरिष्ठ मेहालामी राजेन्द्र थापा वरिष्ठ मेचोमी बालकृष्ण सजीव वरिष्ठ सङ्गीतकर्मी दिप तुलादर पिनिगु बोती दुगु ख छम टेलिभिजन प्रस्तुतालिसे इजिप्टे मेपी छिमसमेस्त अनिया अदालत मृत्युदण्ड या सजा कोचुगुदु इजिप्तिया सरकारी अखबार अल अकरम या त उद्धृति यासे बिबिसी जानकारी बिगु कथ इपी छगु अपराधिक गिरोहले दुथ्यापिङ ख उगु गिरोह न लागु वास देखेको नीति मागु कच्चा पदार्थ विदेश हेगु यनाचुङ्गु वो पाखे उत्पादन जुगु लागु वास इजिप्ते मिगु यनाचुङ्गु ख इमिगु पाखे अवैध ल्वापत क बराबर जुगु धागुदु मृत्युदण्ड सजा निङ्कुपी मध्ये श्री गुद या सारा खाली पान ख गुम छम टेलिभिजन प्रस्तुता ख ओ सञ्चालन यहीको ज्याजो मिसन इम्पोसिबले अपराध लिसे स्वागु घटना किनिगु ख सारा थत बिगु दोप अस्कुरियाना उया चङ्गुदु स्थानीय अदालत यह या महिना हे फैसला निङ्कुगु ख यसा उगु फैसला त लचिलिपा बल्ल सुनिश्चित यागु ख थौ दे न्यङ्क सामान्य लिसे मतिक वा वैगु धागुदु फुक लागे न न्याना लाप्सा तोया वा वैगु व छगुनीको थासे आफल वा वैगु मौसम पूर्वानुमान मासा घाँ तागु ख मौसम हिलाउ अङ्गुली बहनी यात्रा मया त राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व व्यवस्थापन प्राधिकरण इनाप यागुदु
मिग सुनिगले नि नेगु फुटि च्यागु डिग्री सेल्सियस या क्वाजो लुगुख अथे सोनिगले पेङ्गु फुटि न्यागु मिलिमिटर वा नाप ओगुदु नेपाल भाषी बुख कोचाल सुभा।

라랑 싱진 버들기 얄캅기 밍라 삼보던 갸낭굽 싱진 레콩기 시에두빈 प्रतिनिधि सभाकी छोक्सो डोलप्रसाद अर्यालकी रङजुङ कल्यातेमा क्योन फोकु मितियावाला खक्षनपोजी सुङकी फेन्चेनपो क्यान सुङक्युप्ताङ राहतकी लाकातियो कितुब्ला सुनाङ वाय दादिङ गल्छीकी भोटेकोसी सोतोक्तेमा क्योन फोकु सकुल्तियो जिनागिन छोक्सो अर्यालकी सोतोकी क्योन फोकु मितियावाला सर्केक सुङक्यो पोतुप दास टडी कितुप्ताङ राहत गोने तेरुप लाकाला सुङकी तह सुङकर डिक्ने लाकाकी गो सुङसुङ तुग्राङ क्याने छोक्सो अर्यालकी क्योन फोकु मिति मोसी क्याने खोङतिवाला राहतकी टडी क्यान तेरुप सिलोन बालेन्द्र शाहकी सोतोकी क्योन भोकु सखुला निमिट्याङमा छाक्लेन नङ्गुप सुङक्युप ल्याचेतपा तेवला सिकोर कितुप सुङवाए सामाजिक सञ्जाल तेमा लेन ख्याफेल क्यानाङिन रङजुङ कल्याकी तुसोला छाक्लेन नङ्गुप सुङक्युप ल्याचेतपा तेवला निगौ सेवा सुविधा तियो तेरी सुङकी तेरुप सुङसुङ सिलोन शाहकी एमबी मग्मी एमबी कोर्सुङ मग्मी तङ सशस्त्र कोर्सुङ मग्मी बल्की सिगडिल्ला क्योन भोकु सखुल्ने हारिङ सेक्ला तोङचुकसुम सही सुम तङ गुप्चुगुवाचिक मितेवाला सुङक्युप क्याउ सुङिन सुङक्युप ल्याचेतपा तुई क्योन भोकु मितेवाला हेलिकप्टर तेमाताङ ग्याप्ला खुर्ने रङ घिन्सिनाङ म्यानखाङ केलुप सुङसुङ तुग्राङ क्याने सिलोन साहाकी फुङबुला टडिकितुप क्योन फोकु सकुल्ला नजा फेलमिजितुप्ला हुर्ता क्याने सुङक्युप ल्याचातपा तुई लाका कि ओतुप सुङवाए तुग्राङ क्याने एमबी मक्मिकी गोठितला स्वतक वलुङमे नुवाकोटकी त्रिशुलीकी भट्टारला ओतुप मैथिल ब्यारेक्ने फरवार्ड हेडक्वार्टर इमर्जेन्सी मेडिकल रेस्क्यु टिम ताङ फरवार्ड एयर बेस जोने सुङक्युप लाका कि ओतुप सुङसुङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी छोक्सो रवि लामेछा नेताङ अमेरिकाकी चिगेलोन्पो मार्को रुबियो पर्ला हारिङ टेलिफोन तेमा टोङ्गुचोङ वाय टेलिफोन टोङ्गुकी रिमाला चिगेलोन्पो रुबियो कि भोटेकोसी सोतोकला रक गलुप्तेवाला सेम्सो सु नगिन एम्बी मिताङ सुङला ग्याप्युर क्याउ रासोपाकी सेन वाय छोक्सो लामी छाने कि दुकै कलेकी तुसोला अमेरिकी सुङ्ने वा रोक्रमकी तोन्दोकला सङ थुचिसे सु नगुप सेन वाय दिपार लारङ सिगेलोन्पो रिभ्यु कि एमबी सुङला याङलुङसाङ रोक्रमकी तुप छोक्ला अमेरिकी सुङ हो तुप ख्यान्थोक नगुप रासोपा ल्याखुङकी सेतुपिन छिगेल लोन्पो सिसिर खानालताङ मालदिप्सकी छिगेल लोन्पो इरुथिसाम एडम पर्ला हारिङ फोनला टोङ्गुचोङवाए टोङ्गुकी रिम्बाला छिगेल लोन्पो एडम कि लोन्पो खानाला भोटेकोसी चाङबुला वाउ सोतोकी भङ्गी क्योन फोकु कोर्ला मालदिप्स सुङ ताङ त्याकी मिमाङ सक्ने सेमदुक्लाउ सुङिन रोक्रम कितुप खेलेन क्याउ सेन वाय दुग्राङ क्याने दुकै कले कि तुसोला मालदिप्स सुङकी क्याउ ग्याप्युर्ला लोन्पो खानाल कि थुचिसे सुनाङुसाङ सेन वाय रसुवाकी भोटेकोसी लाउ सोतोङला स्वर्ने नासा गलुप्ती थो तान्दासाक तोङ चिकताङ सही सुमताङ अप्चुङ आलेपु सेन वाय फुङबुतुई मोसीकी तोन्दोङला डिएनए नमुना दुने तान्दासाक फुङबु तोङ चिकताङ सिप्चु स्याजी मुक्तुम नाङला ज्याङने टडी क्यान सिन्दुप सेन वाय फुङबु मोसीकी तोन्दोङला नासा गलुप्मी तोङ चिकताङ सैङि ताङ गेचु ताङ खाङबिमी तोङ चिकताङ सैङि ताङ गुप्चु गुवाई चिक क्याने मिरा तोङ नि ताङ सैङ ताङ दिन्छुकी डिएनए नमुना दु सेन वाय दुग्राङ क्याने मोसी माप्यौ तोङ चिकताङ सै सुमकी फुङबि थो एमबी कोर्सुङ मग्मिकी वेबसाइटलाई जाङ हौ तुप सेन वाय सोतोक तेमा क्योन फोकु सखुल्ला सुङक्युप कितुप तोरुप तिय छोलुप राहत गोतुप फुङबु टडी कितुप लाकाला तान्दासे कोर्सुङ मग्मी तिय मिरा तोङ दिन्ताङ सै गुताङ चिङि कोर्सुङ मग्मी तिय लाग्लेन क्यान हो तु सेन वाय कोर्सुङ मग्मिकी तान्दासे तोरुप तोङ जिताङ दिन्छु थोन दिनला छोलिनु तुप सेन वाय तान्दासेकला कोर्सुङ मग्मिकी तोङ चिकताङ सै सुमताङ सिप्चु स्या गेला सुङक्युप क्याउ सेन वाय भोटेकोसी सोतोकलाई सोर्ने तोरुप तिय छोलुपलाई एमबी कोर्सुङ मग्मिकी मिक्सल जङदर बिन्दु कि केनाइन कि सकपा लग्लेन कितुप गनवाए सोतोक टोकपा ताङ थलिवाकला सोरु मितियो ताङ तोरुप मितियो छोलुपला मिक्सल जङदर न्यौ कि थोकुलाका फेन्चेनपो डोइङ्गलुप सेनवाए रसुवा नुवाकोट ताङ चितवनला कोर्सुङ मग्मिकी केनाइन सकपा लग्लेन क्याने सुङक्योप ताङ छोलुपलाका कि ओतुप सेनवाए रसुवा नुवाकोट ताङ चितवनला जर्मन सेफर्ट बेल्जियम सेफर्ट ताङ लेब्रा डोरला मितियो सोलुप ताङ सुङक्युप कि तोन्दोकला लग्लेन क्याउ सेन वाय कोर्सुङ मक्मी सुङसेपा अभिनारायण काफले कि थलिवाकला लेमोतुप मितियो सोलुपला क्यानाइन छोकपा फेन्सेन बोचुङुप सुङसुङ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तेजिन टडिक प्राधिकरण कि कोडिक्याउ सर्गोत्पी लेन्जोमला कार्यकारी स्वर डाक्टर धर्मराज उब्रेतीकी बोटिकोसी सोतोक्तेमा क्योन फोकुस सखुल्ला सुङक्युप ल्याचेतपातुई राहत गोने तेरुप कलेला स्वरूप मितेउला सुङक्युप कितुप साम्बा तेजिन अस्थायी चालक थियो याङलुङ टडी कितुप लाका थियो हुर्ता क्याने कि ओतुप सुङवाए नाङसित लोन्पो सुदन गुरुङताङ सक्सुक ओतुप लेन्जोमला सुङ्लप नगिन स्वर डाक्टर उब्रेतीकी सामाजिक सञ्जाललाई खेपेल चुङ्गुप साङ्ग्युरताङ भिडियो निङबातुई लेन फिलक पहाको सुङ्गिन आधिकारिक लेन्तियोला तिरङ इच्छे कितुप्ला तेरिला सुनाङ वाय
रसुवाकी बोटेकोसी चाङबोला औषतोकला तुरुप मितिय सलुप्ला तङ्गोसी कितुप्ला डिएनए नमुना दुतुप्ला तनहु कोर्सुङ मगमिकी सतोकला स्योर्ने तुरुप मितुई खाङबी मितुई कोर्सुङ मगमी छकपाला डेलो जोगोला सुनाङवाए कोर्सुङ मगमी तनहुकी डिएसपी द्वारिका प्रसाद घिमिरेकी सतोकला स्योर्ने तुरुप मितुई खाङबी मितिवाला डिएनए नमुना खुर्नेङगोला सुनाङु ख्यान्तोक नाङसुङ सतोकला तुरुप तिवा तनहु जोङखी आम्बु खैरिनी तङ देवघाटला उतुप त्रिशुली चाङबुने तन्द सेक फुङबु सुङचु सुवा गुङ एनवाइसिसी तिनाङला फुङबु निसुजी पोखरा कल्तङुप सेनवाए पाल्पा जोङखाला मिमिर सेङी तङ अप्चुङा आङाला डेङ्गु नजा थोङ्गु सेनवाए तन्दी पल्जोर लोङी तोङ गेचुग्या सुमतङ गेचुग्या झिकी साउन तङ बदौ ला नाङला पाल्पा जोङखाला मिमिर सेङी तङ अप्चुङा आङाला डेङ्गु नजा थोङ्गु थोतेन ल्याखुङकी ल्याब टेक्निसियन मधुसूदन भट्टराईकी ख्यान्तोक नाङ्गुबिन तन्दा पाल्पा जोङखी डेङ्गु नजाकी थोरिम कालेला उतुप सेनवाए तन्दा यर्बी तुसोला छुखिलु तङ लामखुटे फेल्थोपु खोरियु कुङ्गुप्तपकी डेङ्गु नजा फेलुप थोतेन ल्याचतपातुई सेनवाए हारिङ टोप्ला थक गेब्ने सुनसरीकी कोसी हुल्सोकपा वडा आङ टुक लाही टोलकी जन्दा मिराजिक नासगन वाए हारिङ टोप्ला मेसी चो गलुप रिम्बाला थक गेब्ने ती दासकी लोङी सुटुकी पप्पु यादव नासगलुप सशस्त्र कोर्सुङ मगमिकी एसपी लभ कुमार सापकोटकी ख्यान्तोक नाङ्गुबिन रेडियो नेपालने सेरी केला साङ्गुर डुप्सुङ थुजिसे

ई रेडियो नेपाल ठीक रविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। रसुआ स्थित भोटे कोशी नदीमे आयल बाढ़िक कारण भारी जनधनक क्षति भेला पर आइ देश भरि राष्ट्रीय शोक मनाओल जा रहल अछि। नेपाल सरकार मंत्रिपरिषदक एहि भादव 18 गते बैसल बैठक भादव 10 गते के बाढ़िक कारण मृत्यु वरण केनिहार व्यक्तिक सम्मान स्वरूप ई घटना भेल 13 दिनक पुण्यतिथिक दिन राष्ट्रीय शोक मनबाक निर्णय कयने छल। ओहि निर्णयक आधार पर आइ देशभरिक सरकारी कार्यालय एवं विदेश स्थित नेपाली दूतावास संयोगमे राष्ट्रीय झंडा आधा झुकाकर शोक मनाओल गेल अछि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल एहि भादव 10 गते रसुआक भोटे कोशी नदी में आयल बाढ़ सँ प्रभावित एवं प्राकृतिक विपत्ति में घर बार विहीन भेल आफंत गुमाओल विस्थापित भेल आ अपन जीविकोपार्जनक आधार पर खोसल गेल नागरिक सभक पीड़ा अत्यंत गंभीर रहलाक कारणे एहन आ हुनक सभक राज्यक संग भरोसा चाहल बतौलनि अछि। ओ पीड़ित सभक शिकायत आ मांग के आलोचना नहि समझ कऽ समस्या समाधानक लेल संकेतक रूप में बुझबाक लेल सेहो आग्रह कयलनि। भोटे कोशी नदी में आयल बाढ़ सँ प्रभावित रसुआ अनुआकोटक विभिन्न क्षेत्रक स्थलगत अवलोकन कऽ राजधानी काठमांडू वापस भेलाक बाद राष्ट्रक नाम में संबोधित करैत राष्ट्रपति पौड़ेल ई बात बतौलनि। राष्ट्रपति पौड़ेल बाढ़ पीड़ित सभक उद्धार खोज राहत पुनर्निर्माण आ पुनर्स्थापनाक सब काज के और प्रभावकारी ढंग सँ आगू बढ़ेबाक लेल सरकार सँ राज्यक स्थानीय सहित सब तह निकाय संरचना आ पक्ष सँ आवश्यक समन्वयक काज भऽ रहल स्वयं विश्वस्त रहल बात बतौलनि। ओ हमसब नेपाली अत्यंत गंभीर शोक आ पीड़ा सँ गुजरि रहल एहि कठिन तथा दुखद क्षण मे स्वयं नागरिक सब बीच किछु उपस्थित भऽ कऽ उल्लेख करैत ई दुखद घड़ी मे स्वयं सेहो सभक संग रहल बतौलनि। उद्धार कयल प्रत्येक व्यक्ति के खाद्यान्न स्वच्छ पेयजल सुरक्षित आश्रय आवश्यक औषध उपचार तथा मनोसामाजिक सेवाक पहुँच सुनिश्चित होयबाक बात पर राष्ट्रपति पौड़ेल जोर देलनि। एखन बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भेल व्यक्ति गर्भवती महिला तथा अन्य जोखिम में रहल आ विशेष संरक्षण आवश्यक पड़वला नागरिक सब प्रति विशेष ध्यान देबाक लेल आवश्यकता रहल तथा अस्थायी आश्रय स्थल सब सुरक्षित तथा मर्यादित होयबाक विषय में हमसब विशेष रूप में सचेत आ संवेदनशील होयबाक हुनक कथन छल। सभामुख डोल प्रसाद आर्याल प्राकृतिक विपद सँ प्रभावित कोनो नागरिक राज्यक उपस्थितिक अभाव महसूस नहि करबा सन उद्धार राहत आ पुनर्स्थापना काज आगू बढ़ेबाक लेल तीनू तहक सरकार सँ आग्रह कयलनि अछि। धादिंग के गलछी स्थित भोटे कोशी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रक अवलोकन पश्चात ओ विपद के समय नागरिक के राज्यक उपस्थिति अनुभूति करायब सरकारक पहिल दायित्व रहल बतौलनि। पीड़ित परिवार कतेक जल्दी राहत पाओत आ सरकारक उपस्थिति महसूस करबा सन विषय महत्वपूर्ण थिक सभामुख अर्याल कहलनि। एक गोटे सेहो पीड़ित नागरिक सरकार नहि अछि ई अवस्था नहि हेबाक चाही। सभामुख अर्याल बाढ़ सँ विस्थापित

अधिकारी प्रभावित क्षेत्र सब में उद्धारक संगे राहत तथा पुनर्स्थापना आ पुल तथा अस्थायी संरचना के निर्माण कार्यक प्रारंभिक काज आगू बढ़ाओल बतौल। पत्रकार सम्मेलन में नेपाली सेना के अधिकारी सब बाढ़क कारण प्रभावित जल विद्युत आयोजना सुरंग में भारी पत्थर आ अहिना थाल संगे प्रवेश स्थल में हेलीकॉप्टर सो मात्र पहुँचल जा सकबाक स्थान में सेहो उद्धार कार्य जारी रहल बतौलन। नेपाली सेनाक अधिकारी सब बाढ़िक कारण प्रभावित जल विद्युत आयोजनाक सुरंग में बाढ़िक समय बहुतो कर्मचारी सब सुरंग भीतर नहीं रहल सेहो जानकारी दलन। एहिना सुरक्षा निकायक अधिकारी सब DNA नमूना संकलन का लाश सब व्यवस्थापन भ रहल आ सीमा पार भेटल 18 लाश सब सेहो एहि स्थानक स्थानीय तह सँ समन्वय कर नेपाल आनल के जानकारी दलन। प्राधिकरणक कार्यकारी प्रमुख डॉक्टर धर्मराज उप्रेती बाढ़ हेला पर चीन दिशा भाई का जान बचनिहार 100 से अधिक नेपाली नागरिक के चीनिया आ नेपाल पक्षक समन्वय में सकुशल वापस कैल जानकारी दलन। कार्यकारी प्रमुख डॉक्टर उप्रेती सामाजिक संजाल में फैलल पुराण आ गलत वीडियो आ सूचना नकारात्मक प्रभाव कैल कहित अधिकारी के स्रोत के मात्र विश्वास करबाक लेल आग्रह कलन। पत्रकार सम्मेलन में गृह मंत्री सुदन गुरुंग सेहो उपस्थित छलथि। नेपाल प्रहरी भोटे कोशी में आयल बाढ़ सब पहुँचाओल जनधनक क्षति के विषय में अपमानजनक वीडियो बनाकर सामाजिक संजाल में संप्रेषण करवाला एक युवक के पकड़लक। प्रहरी के साइबर ब्यूरो बाढ़ पीड़ितक अपमान का वीडियो बनौनिहार बैतड़ी सुरनिया गाँव पालिका वार्ड नंबर 7 हाल काठमांडूक बलम्बू निवासी 24 वर्षीय वीरेंद्र मरई के पकड़ कर आई सार्वजनिक कलक। ब्यूरोक प्रवक्ता प्रहरी उपेक्षक दिलीप कुमार गिरी भोटे कोशी में आयल बाढ़ सब भेल क्षति के लक्षित का विभिन्न जात जाति के ईठम घृणित करब अपमान करब आय विपत्ति में खुशी व्यक्त करवाला आशय के वीडियो बनाकर सामाजिक संजाल में सार्वजनिक कलाकार ने पकड़ल गेल जानकारी दलन। पकड़ल गेल मरेऊ पर जिला अदालत काठमांडू सा विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अंतर्गत के कसूर में मैथ थप का आवश्यक अनुसंधान भ रहल प्रवक्ता गिरी बतौलन। नेपाल हुलाक दुर्गम क्षेत्र में पहुँचबैत आयल सेवाक लेल एशिया प्रशांत हुलाक संघ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU के सन 2026 के इनोवेशन अवार्ड प्राप्त कलक। थाईलैंडक बैंकॉक में एही अगस्त 31 से 4 सितंबर धरि आयोजित 14वां APPU कांग्रेस मार्फत हुलाक सेवा विभाग के ई सम्मान प्रदान कयल गेल महानिर्देशक मनमाया भट्टराय पंगेनी जानकारी दलन। सरकारी कुरियर सेवा के रूप में दुर्गम क्षेत्र में सेहो सेवा विस्तारक लेल नेपाल हुलक द्वारा कैल पहल के कदर करित सर्विस इन रिमोट एमरियाज शीर्षक में विशेष सम्मान प्रदान कैल गेल। शासकीय सुधारक 100 कार्य सूची मार्फत सरकार हुलाक सेवा के परंपरागत हुलाक सेवा से सरकारी कुरियर सेवा मार्फत आ रूपांतरण करबात के नीति लेला पर हुलाक संगे महत्वपूर्ण सरकारी कागजात नागरिक के घर आंगन में पहुँचेबा सन सेवा विस्तार कर रहल अछि। राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र शैक्षिक प्रमाण पत्र स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट सहित कागजात नागरिकक घरे में पहुँचेबाक काज के अवार्डक लेल महत्वपूर्ण आधार मानल गेल विभाग महानिर्देशक पंगेनी जानकारी देलनि। रसुआ स्थित भोटे कोसी नदी में भादव 10 गते आयल बाढ़ पश्चात प्रभावित क्षेत्र में संचालन कैल खोज तथा उद्धार अभियान से हाल धरि 13,396 गोटे के उद्धार कैल गेल। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणक अनुसार उद्धार कैल गेल मध्य 3,533 गोटे रसुआ नुआकोट आ धादिंग के 39 होल्डिंग सेंटर में सुरक्षित रूप में आश्रय लऽ रहल अछि। बाढ़ पश्चात एखन धरि 1,355 गोटे के लाश भेटल अछि आ 4,996 गोटे एखनो संपर्कविहीन रहल अछि। एखन धरि 98 गोटे लाश शनाख्त भऽ चुकल आ अपन के बुझाओल प्राधिकरण जनौलक अछि। बाढ़ पश्चात घायल तथा प्रभावित के एखन धरि 6,672 गोटे उपचार सेवा लेल प्राधिकरणक प्रवक्ता शांति महत के अनुसार विभिन्न अस्पताल में उपचाररत 323 मध्य 228 गोटे डिस्चार्ज भेल अछि। एहि तरह नेपाली सेना से 3,379 गोटे आ सशस्त्र प्रहरी से 2,970 गोटे स्वास्थ्य उपचार सेवा लेल ओ जानकारी देलनि। विस्थापित तथा प्रभावित नागरिक के सुरक्षित स्थान में रखैत हुनक सभक आधारभूत आवश्यकता पूरा करबाक लेल राज्यक विभिन्न निकाय राहत तथा व्यवस्थापन काज आगू बढ़ा रहल प्राधिकरण जनौलक अछि। रसुआक भोटे कोसी बाढ़ में पड़ घायल भेनिहार मध्य एक भारतीय नागरिक सहित 21 घायल त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में उपचार भ रहल अछि। अस्पतालक प्रवक्ता डॉक्टर गोपाल सराय अस्पताल में आनल गेल 81 घायल मध्य एक भारतीय सहित 21 गोटे घायल के उपचार भ रहल जानकारी देलनि।
नेपाली सेना 1200 क्षति पहुँचाल।

अरुणाक टनेलमे ब्रेक थ्रू नहि हेबा धरि खो तथा उद्धार कार्य नहि रोकबाक जनौलक अछि। बाढ़ प्रभावित जलभितु अरुणाक टनेलमे लगभग 121 गोटे नागरिक फसल भऽ सकबाक अनुमान करैत सेना खो तथा उद्धारके तीव्रता देलक अछि। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा आइ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमे सहायक रथी सुभाष दंग थापा सरकार काम रोकबाक निर्णय कयल अवस्थामे बाढ़िक अतिरिक्त ब्रेक थ्रू नहि हेबा धरि टनेलमे खो तथा उद्धारक काज जारी रहबाक बतौलनि। अनुसार तीव्रताक संग निरंतर खोजी भऽ रहल अछि। बाढ़ सँ प्रभावित जलविद्युत आयोजनामे लगभग 121 गोटे नागरिक फसल अनुमान सेना द्वारा कयल ओ जानकारी देलनि। नेपाल टेलिकम आ सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल रेडियो नेपाल भी सहकार करबाक सम्बन्धी समझौता भेल अछि। आम नागरिक के प्रभावकारी टेलिकम सेवा, टेलिकमक व्यावसायिक तथा विश्वसनीय सूचना तथा समाचार सेवा प्रवाह करबाक लेल टेलिकम आ रेडियो नेपाल भी सहकार सम्बन्धी समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को राज्य के साथ और भरोसे की जरूरत। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल का कथन, जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किया आह्वान। जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में खोज और बचाव अभियान जारी रहेगा, नेपाली सेना का कथन, नागरिकों को राज्य की मौजूदगी की कमी महसूस न हो इस तरह राहत बचाव और पुनर्वास का काम आगे बढ़ाने का तीनों स्तर के सरकारों से सभामुख टोल प्रसाद अर्याल का आग्रह, और बांग्लादेश में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप, अब तक 117 लोगों की हो चुकी है मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा है कि भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित लोगों को इस कठिन समय में राज्य के साथ और भरोसे की जरूरत है। उन्होंने पीड़ितों की शिकायतों को समस्या समाधान के संकेत के रूप में लेने का आग्रह किया। रसवा और नुआकोट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलगत निरीक्षण करने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति पोडेल ने ये बात कही। उन्होंने प्रभावितों के उद्धार, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण को प्रभावी बनाने तथा बच्चों, बुजुर्गों और अन्य जोखिम वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। राष्ट्रपति ने कहा कि ये दोषारोपण और राजनीतिक टकराव का नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनरुत्थान का समय है। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील भी की कि वे जलवायु न्याय को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएं। रसुआ की भोटेकोशी बाढ़ में अब तक 1356 शव बरामद हुए हैं। इनमें से 1114 शवों का अस्थायी प्रबंधन किया जा चुका है, जबकि डीएनए पहचान के लिए 2570 नमूने लिए गए हैं। अब तक 98 शवों की पहचान कर परिजनों को सौंपा गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, खोज और बचाव के लिए 7912 पुलिसकर्मी तैनात हैं। वहीं अब तक 13396 लोगों का उद्धार किया गया है, जिनमें 3533 लोग रसुआ, नुआकोट और धादिंग के 39 होल्डिंग सेंटरों में रह रहे हैं। बाढ़ के बाद घायल और प्रभावित 6672 लोगों ने उपचार सेवा ली है। विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 323 लोगों में से 228 को छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं 4077 लापता लोगों की तलाश जारी है। रसुआ की भोटेकोशी बाढ़ में 34 देशों के 587 विदेशी पर्यटकों के लापता होने की जानकारी पर्यटन विभाग ने दी है। इनमें 256 पुरुष, 329 महिलाएं और 2 अन्य हैं। सबसे ज्यादा भारत के 184 पर्यटक लापता हैं। लापता विदेशी पर्यटकों में भारत के 184, अमेरिका के 67, मलेशिया के 55, यूक्रेन के 54, लातविया के 33, ऑस्ट्रेलिया के 33, ब्रिटेन के 32, कनाडा के 33, चीन के 26, सिंगापुर के 9, जर्मनी के 8, रूस के 8, दक्षिण अफ्रीका के 6, न्यूजीलैंड के 5, जापान के 5, फ्रांस के 4, कजाकिस्तान के 3, बेलारूस, आयरलैंड, नीदरलैंड और पुर्तगाल, स्पेन और बेल्जियम के 2-2, फिनलैंड, हंगरी, इजराइल, लिथुआनिया, फिलीपींस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इटली, वियतनाम और एस्टोनिया के 1-1 और पोलैंड के 2 शामिल हैं। इसके अलावा बाढ़ में 188 नेपाली पर्यटक भी लापता हुए हैं। अब तक 307 विदेशी पर्यटकों का उद्धार किया जा चुका है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: फोनमा कुरा गर्दा आवाज स्पष्ट नआएर दिक्क लाग्छ?
2: अब अनुभव गर्नुहोस् नेपाल टेलिकम 4G भोल्टे।
1: भोल्टे भोइस ओभर एलटी, अब तपाईँको हरेक कुराकानी अझ स्पष्ट, अझै जीवन्त।
2: एचडी भोइस क्वालिटीसँग कम ब्याकग्राउन्ड नोइज र अल्ट्रा क्लियर आवाज।
1: यस्तो अनुभव मानव तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको व्यक्ति तपाईँको छेउमै हुनुहुन्छ।
2: र अझ रमाइलो कुरा,
1: फोनमा कुरा गर्दै गर्दा पनि चलाइरहनुहोस् 4G स्पिड इन्टरनेट।
2: Clear calls र fast internet एकै साथ।
1: सेवा सुचारू गर्न आफ्नो फोनमा *444 हाश डायल गर्नुहोस्। 4G बोल्टे
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। सभामुख टोल प्रसाद अर्याल ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसी भी नागरिक को राज्य की मौजूदगी के अभाव का एहसास न होने देने के लिए बचाव, राहत और पुनर्वास के काम तेजी से आगे बढ़ाने का तीनों स्तर के सरकारों से आग्रह किया है। धादिंग के गलछी स्थित भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि आपदा के समय नागरिकों को सरकार की मौजूदगी का एहसास कराना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों के लिए जल्द से जल्द सुरक्षित आवास की व्यवस्था की जाए और राहत वितरण को न्यायसंगत और व्यवस्थित बनाने के लिए संघ, प्रदेश और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय जरूरी है। सभामुख अर्याल ने वास्तविक पीड़ितों की पहचान कर सभी प्रभावित परिवारों को समान रूप से राहत उपलब्ध कराने तथा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर मानवीय, भौतिक, कृषि, व्यापार और आजीविका के नुकसान का वास्तविक विवरण जुटाने का भी आग्रह किया। उन्होंने जोखिम वाली बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने और भविष्य के जोखिम को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन पुनर्निर्माण की नीति और मापदंड तैयार करने पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टेलीफोन पर बातचीत की है। रासोपा के मुताबिक आज सुबह हुई बातचीत के दौरान विदेश मंत्री रूबियो ने भोटेकोशी बाढ़ में लोगों की मौत पर गहरा दुख जताते हुए नेपाल सरकार और नेपाली जनता के प्रति

गंवाने वालों की स्मृति में पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलित किया गया था। पशुपति क्षेत्र विकास कोष की ओर से आयोजित दीप प्रज्वलन में दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। इस दौरान आपदा में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और लापता लोगों का जल्द पता चलने की कामना भी की गई। दीप प्रज्वलन में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इससे पहले सुबह पशुपतिनाथ स्थित बागमती नदी के तट पर विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का पाठ और पारायण भी किया गया। परराष्ट्र मंत्री शशीर खनाल और मालदीव के विदेश मंत्री इरुथिसाम एडम के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान एडम ने भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ से हुई जनधन की भारी क्षति पर मालदीव सरकार और जनता की ओर से दुख जताते हुए नेपाल के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया। परराष्ट्र मंत्री खनाल ने मुश्किल समय में नेपाल के साथ खड़े होने के लिए मालदीव सरकार और जनता का आभार जताया। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े साझा चुनौतियों पर चर्चा की और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों के जरिए जलवायु न्याय को बढ़ावा देने के लिए समन्वय और सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इस साल अब तक 42,590 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, जबकि 117 लोगों की मौत हो चुकी है। सितंबर में मामलों में अचानक बढ़ोतरी से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत और 1,558 नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो इस साल एक दिन में भर्ती होने वाले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आने वाले हफ्तों में स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई है। डेंगू के साथ देश में पहले ही खसरे के प्रकोप से भी जूझ रहा है, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था पर दोहरा दबाव है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोटे कोशी बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को राज्य के साथ और भरोसे की जरूरत, राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल का कथन। जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किया आह्वान। जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में खोज और बचाव अभियान जारी रहेगा, नेपाली सेना का कथन। नागरिकों को राज्य की मौजूदगी की कमी महसूस न हो, इस तरह राहत बचाव और पुनर्वास का काम आगे बढ़ाने का तीनों स्तर की सरकारों से सभामुख टोल प्रसाद अर्याल का आग्रह। और बांग्लादेश में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप, अब तक 117 लोगों की हो चुकी है मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।

जाकर अस स्वभाव भल भ्राज। हौं कृपालु गुरु चरण शरण गही, भयो धन्य जग आज। अर्थात बिना कारण ने जीव उद्धार करने स्वभावले सुशोभित शरणागत रक्षक परम दयामय सद्गुरु भगवान को शरण ग्रहण गरेर म आज धन्य भए। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु को चरण कमल में कोटि कोटि वंदन गर्दै कार्यक्रम अध्यात्म संदेश को प्रतीक्षा में रहनु भएका आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं राधे राधे। आदरणीय श्रोताहरू, संसार को लौकिक विद्या दिने शिक्षक को उपकार त हामी कहिले भुल्न सक्दैनौं भने जसले हाम्रो आत्मालाई परमात्मासित साक्षात्कार गराइदिन्छन् त्यस्ता समर्थ महात्मा गुरुको गुण कसरी वर्णन गर्न सकिएला, अर्थात् कदापि सकिन्न, किनकि यसमा पनि उनीको कृपा शक्तिको साथ चाहिन्छ। अस्तु आउनुहोस् सत्सङ्ग प्रारम्भ गरौँ गुरु महिमा गान।